0: Hello and welcome to the daily highlights of Commonwealth Game 2026 Glasgow. My name is Munish Jolly and I have somebody who's smiling with that impressive performance in Glasgow, Megha.
1: Shukriya Manish. क्यों ना शुरुआत करें कल खेले गए मुकाबलों से। जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ियों इशरूप अवतार और यश ने मेडल की दावेदारी पेश की। पहले बात करते हैं विमेन 78 केजी कैटेगरी की, तो इशरूप नारंग ने कनाडा की कॉरली गॉडबाउट को कड़ी चुनौती दी, लेकिन उनका सफर पोडियम से बस एक कदम पहले थम गया और वो ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई। इशरूप ने इससे पहले रेपेशाज राउंड में कैमरून की जॉर्जिका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल की रेस में वापसी की थी। अपने कैंपेन की शुरुआत में इशरूप ने राउंड ऑफ 16 में स्कॉटलैंड की निकोल वुड के खिलाफ गोल्डन स्कोर में यू को हासिल करके एक रोमांचक जीत दर्ज की थी।

0: Mr. Ajay Singh.
1: It has been a historic last 2 days, winning 7 golds and 3 silver medals. This is the largest ever number of golds and the best performance of any country ever in the 100-year history of the Commonwealth Games.
2: मुनीश, अब बात करते हैं एथलेटिक्स की। भारत का सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में उतरा, जिसमें कुल 32 खिलाड़ी शामिल थे, 22 पुरुष और 10 महिला। भारत ने एथलेटिक्स में अपना अब तक का सबसे शानदार कॉमनवेल्थ गेम्स कैंपेन दर्ज किया, जिसमें एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स को मिलाकर कुल रिकॉर्ड 16 मेडल्स हासिल किए। इनमें से 10 मेडल्स एबल बॉडीड इवेंट्स और 6 पैरा इवेंट्स में आए। मेंस जैवलिन में नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यूटांट यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर्स का पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में गुलवीर सिंह ने भारत के लिए सबसे शानदार इंडिविजुअल कैंपेन्स में से एक पेश किया। उन्होंने 10,000 मीटर्स 27 मिनट्स 49.78 सेकंड्स में पूरा करके सिल्वर जीता और इसके बाद 5,000 मीटर्स में 13 मिनट्स 24.95 सेकंड्स का समय लेकर ब्रॉन्ज अपने नाम किया। इसके साथ ही वो कॉमनवेल्थ गेम्स के एक ही एडिशन में 2 ट्रैक मेडल्स जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। भारत को जंपिंग इवेंट्स में भी जबरदस्त सफलता मिली। सर्वेश कुशारे ने मेंस हाई जंप में सिल्वर हासिल किया, जबकि मुरली श्री शंकर ने लॉन्ग जंप में लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम सिल्वर अपने नाम किया। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने सिल्वर जीता और सिल्वा प्रभु ने ब्रॉन्ज हासिल कर भारत का डबल पोडियम पूरा किया। प्रवीण के लिए ये जीत बेहद खास रही, जो बर्मिंघम 2022 में सिर्फ 3 सेंटीमीटर से ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए थे। उधर तेजस्विन शंकर ने डिकैथलॉन में ब्रॉन्ज जीता और इस कठिन 10 इवेंट कंपटीशन में कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। सीमा कालीरमना ने विमेंस डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज अपनी झोली में डाला। हालांकि कुछ परिणाम गेम से पहले की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर्स के हीट्स में ही बाहर हो गए। अनिमेश कुजूर ने अपना 200 मीटर हीट जीतकर प्रभावित किया, लेकिन वह सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सके। तेजस शिरसे गेम से पहले के अपने बेहतरीन फॉर्म को 110 मीटर हर्डल्स में मेडल में तब्दील नहीं कर पाए, जबकि पारुल चौधरी 3000 मीटर और 5000 मीटर स्टीपल चेज दोनों में पोडियम से बाहर रही। पैरा एथलेटिक्स में भारत को 3 गोल्ड मेडल्स और 2 यादगार 1-2 फिनिश हासिल हुई। शर्मिला धनकर ने विमेंस F57 शॉटपुट में भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया। शिल्पा के शायला को ब्रॉन्ज अवार्ड किया गया। इसके बाद दिलीप महादुगावित ने मेंस T47 100 मीटर में 10.71 सेकंड्स के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता, जबकि मोहम्मद बासिल ने सिल्वर अपने नाम किया। भारत ने अपने पैरा एथलेटिक्स कैंपेन का अंत F57 शॉटपुट में एक और डबल पोडियम के साथ किया। सुमान राणा ने गोल्ड जीता, जबकि शुभम जुयाल ने सिल्वर हासिल किया, जो भारतीय एथलेटिक्स के इस ऐतिहासिक कैंपेन का बेहद शानदार अंत रहा।
0: Now let's move on to weightlifting. India fielded an 11-player contingent in weightlifting, spearheaded by world champion Mirabai Chanu, who impressed all by lifting 85-kilogram Commonwealth record and a Games record in snatch and a Games record of 105-kilogram in clean and jerk with a total of 190-kilogram, a Games record, winning gold in 48-kilogram category. But it was heartening to see Gyaneshwari Devi clinching the silver in 53-kilogram category with a 199-kilogram national record that she created in Glasgow. Bindya Rani Devi's bronze medal, Harjinder Kaur's 227-kilogram silver medal victory were the highlights as far as the women weightlifters were concerned. Moving on to the men's category, Rishikanta Singh created a games record in snatch when he lifted 121 kilograms and a total of 264 kilograms with 143 in clean and jerk, got a silver for India. Muthupandi Raja got a silver in 65 kilogram category. Ajay Babu got a silver in the 79 kilogram category. And Lovepreet Singh in the 110 kilogram category got a silver. पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का नाम तब रोशन हुआ जब बिहार के झंडू कुमार ने इतिहास रचा। मेंस हेवीवेट में तीसरे स्थान पर आए और भारत को 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला मेडल दिलाया। ये भले ही ब्रॉन्ज मेडल था, लेकिन बचपन से ही पोलियो का शिकार हुए झंडू कुमार

0: ने ये साबित तो कर दिया कि शरीर की कमजोरी इरादों की मजबूती के आगे कुछ नहीं।
1: ग्लासगो में भारतीय जूडो दल ने 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अस्मिता डे ने महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग फाइनल में कनाडा की हेदी क्वाश को गोल्डन स्कोर में हराकर भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया और कॉमनवेल्थ गेम्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष जूडोका बन गए। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के बेहद कड़े गोल्डन स्कोर फाइनल में इंग्लैंड की एसेलिया टॉपराक के खिलाफ खेलते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं उन्नति शर्मा ने महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में साउथ अफ्रीका की स्काई को महज 67 सेकेंड्स में इपॉन से हराकर ब्रॉन्ज जीता और भारत का 4 मेडल टैली पूरा किया। भारत के लिए ये 2 गोल्ड मेडल्स ग्लासगो को जूडो के इतिहास में एक ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू एडिशन बनाते हैं।
0: अब बात करते हैं लॉन बोल्स की। 4 इवेंट 6 एथलीट्स। पुरुषों की जोड़ी नवनीत सिंह और दिनेश कुमार, इन्होंने ग्रुप स्टेज में लगातार 4 जीत के साथ मजबूत शुरुआत की, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ एक अहम टाई ब्रेक हारने के कारण वे मेडल राउंड में नहीं पहुंच पाए। पुरुषों का सिंगल्स पुतुल सोनोवाल के द्वारा भारत ने खेला। इन्होंने अपने पहले मैच में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रायन बेस्टर, जो कनाडा के हैं, उनको एक रोमांचक टाई ब्रेक में हराकर सुर्खियां बटोरी। महिलाओं की जोड़ी रूपा रानी तिर्की और पिंकी की थी, मेडल की दौड़ में शामिल होने के लिए आगे नहीं बढ़ पाई। यानी लॉन बोल्स इवेंट में इस बार कोई मेडल हासिल नहीं हुआ।
1: 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में भारत की महिला टीम ने अपना कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यू किया, लेकिन अपने 3 ग्रुप मैचेस हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में भी भारत बिना किसी मेडल के वापस लौटा। इसके अलावा स्विमिंग में भी भारत को कोई मेडल नहीं मिला।
0: Well then, the Commonwealth Games 2026 have come to an end. Australia topped the final medal standings at the Commonwealth Games with 70 gold medals and 170 medals in all. India finished 4th with 13 golds, 17 silvers and 9 bronze medals.

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
0: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
0: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
0: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
2: जी,
0: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
2: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।

0: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
1: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
1: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
1: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
0: तो श्रोताओं, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
1: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
0: मेरी माँ, मेरी

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।
3: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी

0: देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। रामप्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था।
3: सरिया खेलते हैं किसन रामा दूसरे पिसन।
0: वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
0: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
0: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
2: मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
1: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
2: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।

0: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
1: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
0: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। आठवीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
1: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
0: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
1: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
2: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला, इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उज्ज्वल अक्षर

काकोरी रेलकांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है 8:20। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

0: भारत और नौ फ्रांस समेत कुल 39 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथे स्थान पर कब्जा किया। मेडल्स की इस रेस में वक्त इस बात का गवाह बन गया कि भारतीय मुक्केबाजों ने ग्लासगो की बॉक्सिंग रिंग को पदक जीतने का सबसे बड़ा मंच बना दिया। अपने मुक्कों के दमदार प्रहार से विरोधियों को बेदम करने वाले हमारे मुक्केबाजों ने एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक समेत 10 पदक जीतकर इतिहास लिख दिया। अपने अब तक के सबसे सफल बॉक्सिंग अभियान में जीतने की जिद रखने वाली भारत की बेटियों ने अपने पुरुष साथियों को भी मेडल जीतने की होड़ में पीछे छोड़ दिया। प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने जहां महिला वर्ग में तिरंगे को आसमान की ऊंचाइयों पर लहराया, दूसरी तरफ पुरुषों में सचिन सिवाच विरोधी नतमस्तक हो गए। लेकिन इतिहास सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही नहीं बल्कि जूडो मैट पर भी लिखा गया। इस खेल में मेडल तो मिलता रहा था लेकिन पदक की स्वर्णिम चमक पहुंच से दूर थी। इस बार अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में वह कर दिखाया जो इससे पहले कोई भारतीय जूडोका नहीं कर पाया था। उन्होंने जूडो में भारत को राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके बाद तो टीम जैसे नए जोश और उमंग से भर गई। तभी तो पहली स्वर्णिम सफलता के कुछ ही देर बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर सफलता को दोगुना कर दिया। एक सच ये भी है कि इन तमाम सफलताओं की नींव इन खेलों की शुरुआत में ही पड़ गई थी जब गोल्डन गर्ल मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में देश को पहला सोना दिलाया। एक बार जीत का ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। ट्रैक एंड फील्ड पर भी हमारे खिलाड़ियों की चमक फीकी नहीं पड़ी। चोट के बाद वापसी कर रहे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश को निराश नहीं किया और जैवलिन थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया। 10 इवेंट वाले डेकाथलान में तेजस्वी शंकर ने भले ही ब्रॉन्ज मेडल जीता लेकिन ये किसी स्वर्ण से कम नहीं था। डेकाथलान जैसे मुश्किल खेल में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी बने। लेकिन इस बार असली सनसनी तो पैरा एथलीट रहे। दिलीप महादो गावित ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.71 सेकंड का नया गेम्स रिकॉर्ड बनाकर कमाल ही कर दिया। शर्मिला धनखड़ और सुमन राणा ने भी शॉटपुट में सोने के पदक पर निशाना साधा। भारत की कामयाबी के सफर के साथ ही कई और नाम भी रहे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे धुरंधरों ने साबित कर दिया कि खेल चाहे जो भी हो जहां भी हो भारतीय खिलाड़ियों का जज्बा कभी कम नहीं होता। कहानी यही खत्म नहीं होती बल्कि ये सफर आगे बढ़ चला है। भले ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन का ऐलान हो गया है लेकिन ये कारवां अब ग्लासगो की प्रसिद्ध क्लाइड नदी से आगे अहमदाबाद की साबरमती नदी की तरफ बढ़ चला है। 2010 के बाद 2030 में हम दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी करने जा रहे हैं। मतलब अगली बार जब दुनिया हमारे खिलाड़ियों से टकराएगी तो मैदान भी हमारा होगा और करोड़ों भारतीयों का समर्थन भी। स्कॉटलैंड की धरती पर इस बार अनेक आशाएं पूरी हुई, कई उम्मीदें टूटी और बहुत सारी नई आस भी जगी। कुल मिलाकर ग्लासगो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कैसे आंका जा सकता है, इस प्रदर्शन से क्या नई उम्मीद जगती है, साथ ही अहमदाबाद में अतिथि देवो भव की हमारी प्राचीन परंपरा को एक बार फिर से साबित करने का कितना बड़ा मौका है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, खेल विश्लेषक और खासतौर पर पैरा गेम्स पर नजर रखने वाले महावीर रावत और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के साई के रिसर्च पॉलिसी एंड लर्निंग के हेड त्रिदीप भुइया। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू।
0: त्रिदीप, शुरुआत अगर आपसे करें तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि तमाम जो परिस्थितियां थी उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन आया उसकी कितनी सराहना बनती है?
2: देखिए, अगर जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि ये कर्टेल्ड वर्जन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स थे जिसमें बहुत सारे हमारे जो प्रीवियस एडिशंस में जहां हमारे मेडल आते थे रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आर्चरी के बावजूद हमने 39 मेडल्स घर लाए और उन्हीं 39 में से 13 गोल्ड हैं। उन 13 में से पहली बार बॉक्सिंग में हम 10 फाइनल में पहुंचे जिसके बदौलत हमने 7 गोल्ड ट्रांसफॉर्म किया। वही पैरा एथलेटिक्स में भी पहली बार हमने स्वर्ण पदक जीता। अगर आप उस तरह से देखें एथलेटिक्स में भले हमने इस बार स्वर्ण नहीं जीता लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें 10 मेडल, ये भारतीय एथलेटिक्स कंटिंजेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इन फॉरेन सॉइल अगर आप टोटल मेडल से देखें। जूडो जैसे आपने कहा पहली बार स्वर्ण मेडल आए हैं और टोटल ऑफ 4 जो किसी एडिशन में नहीं आए, प्रीवियस बेस्ट हमारा 3 ही था। पैरा एथलेटिक्स में आज तक राष्ट्रमंडल खेल में हमने टोटल 7 मेडल जीते हैं जो कि इसी एडिशन में हमने एक ही बार में ही 7 मेडल हमने अर्न किए हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को देखें तो ओवरऑल आप ये राष्ट्रमंडल खेल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और मैं आशा करता हूं कि आने वाले राष्ट्रमंडल खेल में जब सारे गेम्स दोबारा आएंगे तो हमारी मेडल टैली में रैंकिंग भी इंप्रूव होगी।
0: महावीर, इस बार हमारी ताकत

0: साथ वाले कई खेल ग्लासगो में मौजूद नहीं थे, फिर भी 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूदगी हमारी बढ़ती खेल शक्ति का कितना बड़ा संकेत है।
1: देखिए, अगर हमारे लिए नहीं थे तो सभी के लिए नहीं थे, लेकिन ये है कि उन स्पोर्ट्स में हमारी ताकत बहुत ज्यादा थी, वहां से हम मेडल्स बहुत निकालते हैं। जैसे कि हमारे रेसलर्स, हर किसी को पता है जो भारतीय खेल जानता है कि कुश्ती हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हमको भाते हैं, हमारे खिलाड़ियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है कि 39 में से आपके मेडल जो गोल्ड हैं उसकी संख्या लगभग 30% है। तो ऐसा नहीं कि हम सिल्वर जीत के 39 लाए हैं या ब्रॉन्ज जीत के 39 तक पहुंचे हैं, हमारा गोल्ड का प्रेजेंस भी उतना रहा है। हाँ, ये मैं जरूर चाहूंगा कि अगर एथलेटिक्स में थोड़ा सा हमारे गोल्ड की संख्या बढ़ती तो हम जरूर और ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि देखिए मदर स्पोर्ट्स होते हैं एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिमनास्टिक्स, ये मदर स्पोर्ट है। आपकी मेडल टैली कितनी ऊपर जाती है ये इन तीन स्पोर्ट्स से काफी डिफाइन होता है कि आप एथलेटिक्स में कैसा करते हैं, आप पूल में कैसा करते हैं और आप जिमनास्टिक में कैसा करते हैं। तो इन तीन खेलों में जब तक आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे, और मैं हमेशा थोड़ा और इसलिए उम्मीद करता हूं कि अब मैं वो भारत नहीं देखता हूं जो कॉमनवेल्थ में इतने मेडल से खुश हो जाए, नंबर 4 पे आके खुश हो जाए या कॉमनवेल्थ में खुश हो जाए। मैं उस भारत को देखता हूं जो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, जिसके यहां पे एक बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, जहां पे यंग एथलीटों की बहुत ज्यादा भरमार है, टैलेंट को रिकवर किया जा रहा है। और मैं खुद, मेरे साथ साई के दोस्त मेरे बैठे हैं, बहुत सारी सुविधाएं प्लेयर्स को दी जा रही है, फॉरेन एक्सपोजर उनको बहुत दिया जा रहा है। तो जब तक आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो वी कुड हैव डन मच बेटर, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स अब भारत वो बेंचमार्क लेके नहीं चलता है, अब हमारा बेंचमार्क वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स ही है, क्योंकि हमने बनाए हैं स्कीम्स जैसे टारगेट जो ओलंपिक पोडियम जो है, तो हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक की तरफ ध्यान दें। सो आई एम हैप्पी कि बॉक्सिंग से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, हमारे पैरा खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया, खैर पैरा से तो मैं उम्मीद कर ही रहा था, बट वी कुड हैव डन लिटिल मच बेटर इन एथलेटिक्स।
0: महावीर, इस बार हमारी ताकत वाले कई खेल ग्लासगो में मौजूद नहीं थे, फिर भी 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर भारत की मौजूदगी हमारी बढ़ती खेल शक्ति का कितना बड़ा संकेत है।
1: नहीं, खेल शक्ति हमारी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये नतीजा है पिछले लगभग 7-8-10 सालों से जो एक सिलसिलेवार तरीके से स्कीम्स को पहले सोचा गया और फिर मैदान पे उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे मैं सोचता हूँ कि एथलेटिक्स में थोड़ा सा अगर हम और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते, खिलाड़ियों ने तो अपनी जान झोंकी, 10 मेडल हमें आए, लेकिन गोल्ड का कॉलम हमारा खाली रह गया। इसमें जेवलिन, जिसमें भारत एक बहुत बड़ी फोर्स है, और अब तो इतने सारे जेवलिन थ्रोअर्स हैं भारत में, वहां पे श्रीलंका के जो पथिरागे तरंगा आए हैं सुपर, मैंने उन्हें खुद साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन जो रांची में हुआ था उसमें देखा था, एंड ही इज अ सुपर एथलीट। लेकिन उसके बाद जो भारत ने परफॉर्मेंस किया कमेंडेबल है, वहां मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ और बेटर कर सकते थे, क्योंकि देखिए अब जमाना चला गया जब हम कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके खुश हो जाते थे, अब हमारा जो मिशन है वो ओलंपिक्स है, हमारा मिशन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप है, हमारा मिशन अब एशियन गेम्स में डोमिनेट करना है। तो मैं खुश जरूर हूं, और इस बात से भी खुश हूं कि 39 में से जो लगभग 33% है वो गोल्ड मेडल है। तो ऐसा नहीं कि हम ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर की संख्या की लेके 39 गए, हमने गोल्ड भी कमाए। हैट्स ऑफ टू ऑल द बॉक्सर्स, ऑल द पीपल इन द फेडरेशन जिन्होंने कमाल किया है। तो मैं खुश बहुत हूं, लेकिन थोड़ा सा अगर एथलेटिक्स, स्विमिंग और जिमनास्टिक्स में और अच्छा किया होता, बिकॉज दीज आर मदर स्पोर्ट्स, और एशियन गेम्स में हमारी मेडल टैली कैसी होगी ये तीन गेम्स में काफी कुछ डिपेंड करता है, थोड़ा सा अगर वहां हमने परफॉर्म और अच्छा किया होता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अब वो नया भारत देखता हूं जहां हम सिर्फ कॉमनवेल्थ से खुश नहीं है, हमें ओलंपिक्स में मेडल चाहिए।
0: तो जैसा कि महावीर ने कहा, त्रिदीप की मुक्केबाजों ने तो इस बार कमाल ही कर दिया, ऐसे दमदार पंच पड़े कि एक ही दिन में मेडल टैली का पूरा गणित बदल गया। क्या बॉक्सिंग में इतने अच्छे प्रदर्शन की पहले से हम उम्मीद कर रहे थे?
2: देखिए, जैसे पिछले पेरिस ओलंपिक्स के बाद जो हमारे बॉक्सिंग में परफॉर्मेंस रहा, तो फेडरेशन ने उसमें काम किया, जैसे उन्होंने एक फॉरेन कोच लाए वापस, सैंटियागो जो पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन के, वो एक्सक्लूसिवली दोबारा आए सिस्टम में जहां वो पहले से बॉक्सर्स को जानते थे, और इन्होंने इस बार फोकस सिर्फ फीमेल बॉक्सर्स पे किया है। अगर आप प्रीवियसली भी अगर आप हमारी परफॉर्मेंसेस देखें तो हमारी वुमेन बॉक्सर हमेशा डोमिनेंट रही है मेल के कंपैरिजन में। तो अगर उस हिसाब से देखें, 7 लड़कियों की कैटेगरीज थी वेट, जिसमें से हम लोग 6 में फाइनल पहुंचे हैं, वो इटसेल्फ is a very big thing for us, और उन 6 में से हमने 5 में स्वर्ण पदक जीता है। तो basically अगर आप लड़कियों की साइड में देखें तो ये मैं बोल सकता हूँ, और जो महावीर जी भी एग्री करेंगे, it was a total domination, but उधर लड़कों की तरफ देखें तो जैसे बहुत सारे डेब्यूटा, नरेंद्र वो जो एक वेटरन बॉक्सर है, वो पहले भी मेडल ला चुके हैं, उन्होंने अपना दोबारा मेडल ला, लेकिन जैसे पहली बार डेब्यूटान जा रहे हैं अंकुश, वो वापस स्वर्ण पदक लेके आए हैं, जिन्होंने डेफिनेटली हमारे

0: टैली को एनहांस किया है। और अगर आप देखें, जैसे आपने बताया बॉक्सिंग के बाउट्स ही ऐसे रखे थे कि सारे सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल्स एक ही दिन थे, तो वो तो हम लोगों ने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि भले हम मेडल टैली में अभी पीछे हैं, एक समय पे हम लोग 10वें नंबर पे थे, जहां नाइजीरिया, स्कॉटलैंड, कनाडा ये हमसे आगे थे। जैसे ही लेकिन बॉक्सिंग के मेडल्स आने शुरू हुए, वो पलरा बदल गया। और मुझे बहुत खुशी है कि डिस्पाइट द नंबर ऑफ गेम्स हैव बीन रिड्यूस्ड, वी हैव स्टिल अचीव्ड आवर लास्ट रैंकिंग ऑफ फोर्थ।
1: तो महावीर, बॉक्सिंग की मेडलिस्ट में जो नाम दिखाई देते हैं, और जैसा कि त्रिदीप ने बताया कि कुछ जाने पहचाने नाम हैं, तो कुछ ऐसे भी नए चेहरे थे जिनके बारे में बॉक्सिंग की दुनिया तो क्या कहें, लेकिन जो खेल प्रेमी हैं वो बहुत कुछ नहीं जानते थे। तो क्या माना जाए कि यह प्रदर्शन हमारी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ और सुनहरे भविष्य का संकेत है?
2: इससे ज्यादा ये हमारी बेटर प्लानिंग का संकेत है कि आप प्लान करते हैं, एथलीट्स को एक्सपोजर देते हैं, उनको अच्छी कोचिंग, उनके हिसाब से प्लान करते हैं। और एक बात त्रिदीप कह रहे थे कि जो फीमेल बॉक्सर्स हैं, और मुझे पता नहीं मैं ये कब लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा कि भारत अगर तभी डोमिनेट कर पाएगा जब हमारे फीमेल एथलीट्स डोमिनेट करेंगे, क्योंकि फीमेल चाहे आप वेट लिफ्टिंग में हो, हम मीराबाई चानू को देखते हैं, हम बॉक्सर्स में हो तो मैरी कॉम ने पहला नाम लिया था, पीवी सिंधु है, तो जो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन है बॉक्सिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छे मेडल्स दिए हैं, वेटलिफ्टिंग में भी अगर आप देखें तो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन ही बहुत अच्छा रहा है और उनका जो कन्वर्शन रेशियो है वो भी बहुत अच्छा रहा है। तो मैं इस बात से तो बहुत खुश हूं। और अभी भी अगर हमारा फीमेल स्पोर्ट्स के प्रति ग्रास रूट लेवल पे, हालांकि साई की तरफ से बैठे हैं दोस्त, अस्मिता लीग चल रही है जहां हर स्पोर्ट का एक अपना लीग होता है, आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन फीमेल स्पोर्ट्स। और घरों को भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये एडवाइस करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी लड़कियों को मैदान पे भेजिए, क्योंकि हमारी लड़कियों में वो ताकत है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट कर सकते हैं। आई टोटली सी कि अहमदाबाद जो 2030 होगा, या अहमदाबाद में क्यों जाओ, मैं जापान में देखिएगा जो हमारी फीमेल एथलीट्स हैं, दे विल एनी डे ओवर नंबर इन मेडल टैली टू आवर मेल कंपेटिटर्स।
1: जी, और जूडो में भी इस बार कमाल हुआ है, क्योंकि डबल गोल्ड मेडल की कामयाबी, ये प्रदर्शन क्या जूडो में हमारी बढ़ती ताकत की तरफ इशारा कर रहा है?
0: देखिए, अगर जैसे आपने बताया कि हम हमेशा कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हमेशा अच्छे है रहे हैं, मुक्केबाजी हो, रेसलिंग हो, जूडो में भी अगर आप देखें हमारा प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेल में, हमने मेडल लाए, बट हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे थे जैसे हम बॉक्सिंग और रेसलिंग में किया। लेकिन इस बार अस्मिता दे, जो त्रिपुरा के इतने इंटीरियर जगह से आती हैं, उन्होंने देश का पहला स्वर्ण पदक जीत के अपने देश का तो नाम रोशन किया ही, बाकी अपने स्टेट से जो इतने इंटीरियर एरिया से आ रहे हैं, तो फिर इससे जैसे महावीर जी बोल रहे हैं, जो हमारा टैलेंट पूल है, इट्स नॉट इन द मेन सिटीज, इट्स इन स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। एंड सरकार तो कर ही रही है, उसके अलावा जितने और स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ये ऐसा एक मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा जिससे कोई भी एथलीट को अगर कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए खेलने के लिए वो कभी निराश ना हो। तो अब जैसे ही अस्मिता ने स्वर्ण लाया, उसके पीछे हमारे हर्ष सिंह आ गए, जो पहले मेल एथलीट बने जिन्होंने स्वर्ण पदक लाया। जैसे बताया था, हमारी एक्सपेक्टेशन तुलिका और अवतार सिंह से भी थी, जो पहले खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन ये नए बच्चों ने जो आके जो ये प्रदर्शन दिया है, आई एम 100% श्योर कि हमारा फ्यूचर जूडो में अच्छा होगा।
2: इस बात को ना थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ। अस्मिता कहाँ की लड़की है? त्रिपुरा की। जब कोई दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई से निकलता है ना, तो जो गाँव में बैठे लड़के लड़कियां उनको लगते हैं वहां पे न जाने वो क्या खा रहे होंगे, न जाने क्या ट्रेनिंग कर रहे होंगे, न जाने वो कौन सा वहां पे एक सिस्टम होगा जिसकी वजह से चैंपियन निकल रहे हैं। लेकिन जब हरियाणा के एक छोटे से गांव से, जहां सूखा बहुत आता है, वहां से जब शर्मिला निकलती है, जब त्रिपुरा की एक ऐसी जगह से जहां जिसके फादर एक सिंपल इलेक्ट्रीशियन थे और उन्होंने अपनी बेटी अस्मिता को बहुत सिखाया, हालांकि 2025 में उनका देहांत हो गया और मैं अस्मिता का इंटरव्यू देख रहे थे उनके, जब भी वो अपने पिताजी का नाम ले रही थी उनकी आंख में आंसू आ रहे थे। तो जब ये स्टोरीज गांव तक जाती हैं, जब ये स्टोरीज बाहर आती हैं, तब जो हमारे इंटीरियर के जो बच्चे उनको लगता है नहीं ये तो हम ही में से एक है, और जब आप में से एक निकल के जाता है तो तीन और अस्मिता आगे आके लड़ने की कोशिश करती है, फिर उन्हें ये नहीं लगता कि बॉम्बे, दिल्ली या फिर मद्रास या कोलकाता में कुछ जादू हो रहा है, जादू हमारे इंटीरियर में ही है, तो उनमें वो एक सेल्फ बिलीफ आता है कि वी कैन ऑल्सो डू दिस।
1: बिल्कुल। और महावीर, लगे हाथ ये सवाल भी कि नीरज चोपड़ा ग्लासगो में गोल्ड तक तो नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन इंजरी से वापसी के बाद उनका सिल्वर जीतना भी भारत के लिए क्या राहत की बात है?
2: अब जो आदमी ओलंपिक्स में गोल्ड जीत चुका हो उससे आप कॉमनवेल्थ में सिल्वर तो राहत नहीं मान सकते हैं, बट हमें एक एथलीट की उम्र भी देखनी होगी, वो अपने किस करियर के किस पड़ाव पे हैं, ये नीरज चोपड़ा अच्छा जान सकते हैं, उनके कोचेज अच्छे जान सकते हैं, लेकिन आई थिंक ही हैज बीन अ ग्रेट सर्वेंट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। नीरज चोपड़ा ने जो

0: माल किया है वो मुझे नहीं लगता है कि इस देश की जो सूरत है, जो नक्शा है स्पोर्ट्स का बदलने में, उस एक अकेले लड़के ने आज देखिए आप, मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाता हूं, मैं त्यागराज जाता हूं, मैं छत्रसाल जाता हूं, सब जेवलिन फेंक रहे हैं। खेल में रेवोल्यूशन कैसे लाते हैं ये नीरज चोपड़ा ने दिखाया है। तो अब वो उनमें क्या वो बात है ये सिर्फ नीरज चोपड़ा जानेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मुझे एक और चिंता की बात लगी कि नीरज चोपड़ा ने कहा कि मैं जब भी रन अप पे दौड़ रहा था ना मुझे डर लग रहा था। तो एक एथलीट को डरना नहीं चाहिए कि उनकी बॉडी कब ब्रेक हो जाएगी। तो वी शुड रिस्पेक्ट हिम, वो बहुत कुछ उन्होंने दे दिया है, अब उनसे जितना कुछ और आ जाए ये पॉजिटिव है।
1: जी
2: अब मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जैसे ग्लासगो में अगर आप देखें तो कंडीशंस वेर आल्सो नॉट इजी, इट वाज वेरी कोल्ड और वहां पे हेडविंड आ रहा था जिसके तहत वो डिस्टेंस नहीं जा रहे थे। अगर आप श्रीलंकन को भी देखें, उन्होंने सिर्फ एक ही लेजिटिमेट थ्रो मारा जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और ये जो फील्ड ऑफ एथलीट्स जिन्होंने जैवलिन पे कम्पीट किया कॉमनवेल्थ गेम्स, ये एज गुड एज द वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक। इट हैड एंडरसन पीटर्स जो पहले के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, केशॉन वॉलकॉट जो पिछले बार टोक्यो के वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल जीता है, फिर अरशद नदीम जो ओलंपिक चैंपियन है वो भी रह चुके हैं। बहुत डिफिकल्ट फील था, इसमें पुराने जाने माने एथलीट्स 90 प्लस थ्रोअर्स भी थे जो उस दिन स्ट्रगल कर रहे थे। बट वही में से अगर आप देखें नीरज के साथ यशवीर जो अपना डेब्यू कर रहा था, पहला उनका कॉमनवेल्थ गेम्स, और उन्होंने मेडल लाए। अगर हम इसी की बात करें, आप देखिए जैवलिन में 3-4 सालों में हमें कितने अलग अलग मेडलिस्ट मिले हैं। आप एशियन गेम्स दोबारा पिछले वाले में जाइए, वहां किशोर कुमार जेना आए थे जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में सचिन यादव आए थे जिन्होंने नीरज को भी पछाड़ा था और फोर्थ फिनिश किया था। सो दिस शोज दैट द लेवल ऑफ बेंच स्ट्रेंथ इन जैवलिन हैज इंप्रूव्ड, एंड एज महावीर जी हैज सेड, इट जस्ट रिक्वायर्स अ रेवोल्यूशन फॉर इट टू डू बेटर एट द हायर स्टेज।
1: और त्रिदीप, तेजस्विन शंकर ने तो कमाल ही कर दिया, हाई जंप में इंजरी के कारण बीच में ही स्पर्धा से हट गए, इसके बावजूद डेकाथलान जैसे मुश्किल इवेंट में उनका पदक जीतना, ये तो बड़ी तारीफ उनकी बनती है।
2: एकदम डेफिनेटली, जैसे कि बर्मिंगम गेम्स में तेजस्विन सिल्वर मेडल लेके आए थे हाई जंप में, बट डेकाथलोन को जैसे एथलेटिक्स का बोलते हैं मास्टर इवेंट, क्योंकि इसमें आपको एक नहीं दो दिन कम्पीट करने पड़ते हैं और 10 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तेजस्विन जो हालांकि इन द लास्ट 2 ईयर्स उन्होंने अपना फोकस हाई जंप से थोड़ा डिकैथलॉन में लाया है, जिसके तहत उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, एशियन चैंपियनशिप में भी मेडल लाए हैं, और डिकैथलॉन में इस बार वो पहले इंडियन बने हैं जो डिकैथलॉन में उन्होंने मेडल लाया है, और उसके बावजूद वो पहले इंडियन भी बने हैं जो 2 डिफरेंट इवेंट में उन्होंने मेडल जीता है। तो अगर आप तेजस्विन की बात बोले, तेजस्विन को मैंने बहुत करीबी से कैंप में भी देखा है, वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही ट्रेन करते हैं, दिल्ली का लड़का है, बट वो लड़का लेकिन बहुत एजुकेटेड है, वो उसको पता है कि एक एथलीट को अपने बॉडी के साथ क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेन करना चाहिए, कब उसको पीक करना चाहिए, कब वो ऑफ सीजन होता है। तो ऐसे स्मार्ट एथलीट अगर और आते रहेंगे तो हमारी ऐसे मेडल टैली बढ़ती ही रहेंगी।
1: जी, और महावीर पैरा खिलाड़ियों ने भी इस बार माल कर दिया, कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल पर कब्जा किया जिनमें 3 गोल्ड मेडल भी शामिल रहे। आपकी खास नजर रहती है पैरा गेम्स पर, तो ये प्रदर्शन सचमुच ऐतिहासिक कहा जा सकता
0: है? ऐतिहासिक भी है लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। पिछले 5-10 साल में अगर आप देखें कोई एक स्पोर्ट जिसने बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है वो है पैरा स्पोर्ट्स। रियो 2016 में हमारे 4 मेडल थे, एक गोल्ड बाय हमारे प्रेसिडेंट देवेंद्र झाझड़िया, मरियप्पन का गोल्ड था, दीपा मलिक जी का सिल्वर था और वरुण भाटी का ब्रॉन्ज था। 4 मेडल लेके हम आए। उसके बाद हम टोक्यो में गए तो हम 4 से 17-19 पहुंचे और अब हम 29 पहुंचे हैं पेरिस में। ये मैं ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं। और हमें तो पता भी नहीं रहता कि हमारा इवेंट कौन सा होगा, क्योंकि पैरा में क्या होता है कि सारे इवेंट तो वो देते नहीं है। अगर एथलेटिक्स भी देंगे तो वो 100 देंगे, 200 400 नहीं देंगे। तो इट्स कॉमनवेल्थ गेम्स में वो एक इंक्लूसिवनेस की वजह से पैरा स्पोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं और इवेंट्स वो 5-6 महीने पहले पता चलते हैं कि ये इवेंट्स वहां पे होंगे। दिलीप की ही कहानी में बताऊं, दिलीप 400 मीटर के रनर है, वो 100 मीटर के रनर नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कि दिलीप गवित वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो एथलेटिक्स के चेयरमैन सत्यनारायण जी हैं उन्होंने दिलीप के कोच से बात की कि आप इसे 3 महीने 100 मीटर के लिए ट्रेन कीजिए, और उस लड़के ने उसको अवसर मिला 100 मीटर दौड़ने का और उसने 10.71, कैन यू बीट 10.71 हमारे गुरिंदर वीर के 10.39 है,
1: बिल्कुल,
0: और दिलीप का एक हाथ नहीं है फिर भी वो 10.71 क्रॉस किया। और उसके जो लास्ट के 50 मीटर अगर आप देखो, अमेजिंग, जैसे यूसेन बोल्ट की, ही इज अ बैड स्टार्टर लेकिन ही इज अ ग्रेट फिनिशर। दिलीप ने भी बहुत स्टार्ट इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन आखिर का 50 मिनट मेरे ख्याल से उन्होंने 5-5.5 सेकंड में खत्म किया।

0: और वैसे ही शर्मिला की स्टोरी, एक कहानी महिला की, और जो बताती है कि महिला शक्ति क्या नहीं कर सकती। शी रिफ्यूज टू गेट डिफीटेड इन लाइफ। पहली शादी हुई, अब्यूजिव मैरिज था, पति ने घर से बाहर निकाल दिया, हार नहीं मानी, अपनी दो बच्चों के साथ वो बाहर चली गई। जब से शर्मिला पैदा हुई तब से उनको पता चला कि उनकी माँ की आंखें नहीं, उन्होंने गोल्ड अपनी माँ को डेडिकेट किया। तो ये सब कहानी है। देखिए पैरा में आप जितना जाएंगे उतना आपको लगेगा यार ये तो यहाँ हर कोई एक कहानी है। तो आई एम वेरी हैप्पी अभी तक के जो टोटल कॉमनवेल्थ में थे वो मेडल एक तरफ, और इस बार के जो कॉमनवेल्थ मेडल है वो हमारे एक तरफ। बट हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर प्लानिंग दिस। हमने इवेंट देख लिए थे कि कौन से इवेंट है। हमारे दोनों फौजी जो हैं, जियाल और सुमन राणा, दोनों मेडलिस्ट हैं। और ये भी एक कहानी है कि जो फौज में इंजर्ड हो जाते हैं, जो हमारे फोर्सेज में इंजर्ड हो जाते हैं, आप कृपया पैरा स्पोर्ट्स की तरफ आइए और वहां पे अपना फ्यूचर बनाए, क्योंकि आप फिट तो हैं, आप वहां पे बहुत सारे अच्छा परिश्रम भी कर चुके हैं, आप यू आर वेरी फिट मेंटली एंड फिजिकली, बट ड्यू टू ऑन ड्यूटी आपके कुछ डिसेबिलिटी आ गई है, तो आप पैरा स्पोर्ट्स में आइए और अपने देश का झंडा फौज में नहीं तो खेलों में आप ऊपर कीजिए। और सुमन राणा इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने शॉटपुट में गोल्ड जीता है।
1: जी महावीर, आपकी बातों से और प्रदर्शन से दोनों मिलाकर ऐसा लगता है कि पैरा स्पोर्ट्स में काफी कुछ काम हो रहा है
0: पूरा, और सरकार का इसमें पूरा। मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, नेशनल गेम्स होता है, यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, सरकार ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी कराया है, और एक नहीं दो बार कराया, और मैं सुनने में आ रहा हूं कि जल्दी तीसरा एडिशन भी होने वाला है। तो ये खिलाड़ी आते हैं, उनको टीवी पे अपना गेम देखते हैं, तो सबसे पहले तो इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए, जिन्होंने पहले तो विकलांग शब्द हटाया, दिव्यांग शब्द रखा, थोड़ी क्रेडिबिलिटी दी। किस प्रधानमंत्री ने लोगों से मुलाकात की? लोग अक्सर क्या होते थे, जीते हुए एथलीट आते थे, उनसे मिलते थे, फोटो खींचाते, खत्म हो जाते थे। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्रेंड शुरू किया कि अगर मैं एबल बॉडी के एथलीट से मिल रहा हूं तो मैं पैरा के एथलीट से भी मिलूंगा। वो उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जाने से पहले, जीतने के बाद। तो उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है कि नहीं, आप इस सिस्टम का हिस्सा हो। तमाम स्कीम्स जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाती है, चाहे वो टॉप्स हो, वो सब में पैरा खिलाड़ी शामिल हैं। तो हमारे पैरा एथलीट्स को भी उतना ही फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा है, उतना ही बजट मिल रहा है, ACTC में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही है जितना की नॉर्मल बॉडी का है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, और उसका डोमिनेंस अब हमें दिखने लग गया है मेडल टैली में।
1: जी, और त्रिदीप, कुछ ऐसे खेल जिसमें प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं, बॉल्स, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिमनास्टिक्स में उम्मीदों के अनुरूप हम प्रदर्शन नहीं कर सके, इन खेलों में सिर्फ पार्टिसिपेशन ही काफी है या इन पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है?
2: अगर बॉल्स की बात करें तो पिछली बार बर्मिंगम में हमारे दो मेडल थे, लेकिन इस बार जिन इवेंट्स में हमारे मेडल्स थे वो इस एडिशन में नहीं थे, तो जिसके कारण बॉल्स में हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हो गई। बाकी अगर हम बोले इवेंट जैसे साइकिलिंग और जिमनास्टिक्स, यहाँ पे हमारा जिमनास्टिक में दीपा कर्माकर वाज द लास्ट वन टू गेट अस अ मेडल 2014। उसके बाद से हमारा जिमनास्टिक में थोड़ा पलरा कम ही रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले एशियन गेम्स में वो इम्प्रूव होगा। सिमिलरली साइकिलिंग, अगर आप देखें साइकिलिंग एथलेटिक्स, ये ऐसे इवेंट हैं जो एशियन लेवल पे नहीं है जितने राष्ट्रमंडल में, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप एथलेटिक्स में अगर अभी 10 मेडल है, आप उसको एशियन गेम्स में देखेंगे तो वो डबल होगा या ट्रिपल होगा। लेकिन वही अगर आप जो वेट लिफ्टिंग के जहां 8 मेडल दिख रहे हैं, आपको हो सकता है एशियन गेम्स में 0 दिखे, क्योंकि हमने 1998 से एशियन गेम्स में हमने कभी वेट लिफ्टिंग पे मेडल लाया ही नहीं है। हमने ओलंपिक्स में मेडल लेके आए हैं लेकिन एशियन में नहीं ले पाए। सो एवरी शू डजंट फिट एवरीवन, व्हाट आई वुड लव टू से, तो इवेंट्स अगर हाँ डिसअपॉइंटमेंट तो रही है, गोइंग फॉरवर्ड आई एम प्रीटी श्योर कि हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के साथ भी बैठेंगे ताकि इनकी प्लान डिवाइस कर पाए कि कैसा एक्सपोजर चाहिए, या कोई इनको हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर चाहिए, कोचेस चाहिए, जिसके तहत ये इम्प्रूवमेंट इन सारे डिसिप्लिन्स में जहां हमने थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा उसमें इंप्रूव कर पाए।
1: तो महावीर, 20 साल बाद 2030 में भारत में फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की वापसी होने वाली है, खेलों का फ्लैग भारत को सौंप दिया गया है, अब मेजबान के तौर पर हमारी बड़ी जिम्मेदारी होगी, और जिस तरह से कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी जैसे खेलों की गैर मौजूदगी के बावजूद हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका होगा?
0: नहीं, मौका तो होगा ही, हम होस्ट भी हैं, हम सबके दोस्त भी हुए होंगे और हम सबसे ज्यादा टॉपर भी होंगे, इसी उम्मीद में हम करते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में है और गुजरात में, इसीलिए है कि मैं 20 साल गुजरात में मैंने बचपन के गुजारे हैं, इसलिए मैंने चौकस तरीके से विश्वास है कि गुजरात में आ वक्त जो गेम्स थे ये सुपर डुपर हिट थे। और मैंने देखा हर सांगी जी वहाँ ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, PT उषा जी वहाँ पे मौजूद है।

0: उन्होंने फ्लैग को लिया और एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. एंड आई नो एंड माई फ्रेंड फ्रॉम साई वुड ऑल्सो नो कि काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है. इन राष्ट्रमंडल खेलों में हमारी पूरी टीम गई थी ये स्टडी करने के लिए कि क्या कुछ वहां पे करना चाहिए, क्या कुछ होता है और उसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा. तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि हम होस्ट की तरह से तो किसी को निराश नहीं करेंगे, जो हमने कभी नहीं किया है. लेकिन मैं परफॉर्मेंस की वाइज बिल्कुल मेरी ये दिली इच्छा है कि हम ऑस्ट्रेलिया को इसमें जमकर टक्कर दें.
1: जी, और जैसे महावीर जी ने कहा और इस बार हमारा चांस भी रहेगा क्योंकि हम लोग मेजबानी कर रहे हैं जिसके तहत हमें सारी डिसिप्लिन्स में खेलने का मौका भी मिलेगा, नंबर ऑफ एथलीट्स भी बढ़ेंगे. अगर आपको अगर याद है 2010 में जब हमने मेजबानी की थी तो हम मेडल टैली में सेकंड आए थे. वो हमारा आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है. और जैसे महावीर जी बोल रहे हैं तो उम्मीद है कि 2030 में हम सेकंड से टॉप में आए.
2: जी, तो एक सवाल यहाँ तो बनता है ना कि 101 पदक हमने दिल्ली में जीते थे, क्या सेंचुरी इस बार लगेगी और वो आंकड़ा भी इस बार पार करेंगे हम?
1: उम्मीद तो बहुत है, सरकार अपने एंड से बहुत ट्राई कर रही है. जैसे स्कीम जहां टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो फोकस्ड करती है सिर्फ एलीट एथलीट पे, फिर आपके नेशनल कोचिंग कैंप जो होती है ACTC के थ्रू, और इवन ग्रास रूट में भी जहां खेलो इंडिया इनिशिएटिव्स के नीति के थ्रू इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा कि हमारा भविष्य बहुत ही सिक्योर लगता है. और बीइंग अ होस्ट अहमदाबाद में आई एम 100% श्योर कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी. 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे कि नहीं वो तो समय ही बताएंगे.
2: और महावीर, चलते चलते ये बात भी होती है ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 हमारे ओलंपिक 2036 के मेजबानी के लिए रास्ता साफ करने का कितना बड़ा मौका बन सकता है.
0: नहीं, तब तक एलोकेट हो जाएंगे. इतनी देर तक कोई नहीं छोड़ता है. और लेकिन जिस तरीके से भारत ने पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे चैंपियनशिप अहमदाबाद में ही परफॉर्म किया है, पूरा प्रोत्साहन सरकार से मिल रहा है कि कितनी भी बड़ी टूर्नामेंट हो आप इंडिया में करके दिखाए, हमने करके दिखाया. तो बाय द टाइम 2030 होपफुली 2036 ऑलरेडी अनाउंस हो जाएगा. लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि 101 मेडल आए थे, 101 से ज्यादा शुभ आंकड़ा होता है 111 का, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अहमदाबाद, क्योंकि सारी शुभ जगहों की एक पहचान होती है, तो 111 मेडल मैं उम्मीद कर रहा हूँ अहमदाबाद में जरूर मिल जाए.
1: 111 वही नंबर था जो हमने पैरा एशियन में पिछली बार लेके आए थे.
2: तो ग्लासगो में कल रात कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक तौर पर समापन हुआ और भारत ने 2030 में अहमदाबाद में होने वाले गेम्स के शताब्दी संस्करण की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाली. हाइड्रो में हुए समापन समारोह में स्कॉटलैंड ने भारत को जिम्मेदारी सौंपी. इस दौरान ओलंपियन नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा की मौजूदगी में कॉमनवेल्थ का झंडा आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपा गया. इसके बाद भारत ने मशहूर गायक संगीतकार शंकर महादेवन के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अहमदाबाद 2030 की अपनी यात्रा शुरू की. इसके साथ ही ग्लासगो से कॉमनवेल्थ गेम्स का कारवां अहमदाबाद की तरफ बढ़ चला है. हमारी मेजबानी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो चलिए हम अभी से अपने एथलीट्स का हौसला बढ़ाने और 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाएं. खेल विश्लेषक महावीर रावत जी और टारगेट ओलंपिक पोडियम के रिसर्च पॉलिसी एंड लर्निंग के हेड त्रिदीप भुइयां जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद.
2: फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का. कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे यानी धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति. फिर मिलने के वादे के साथ नमस्कार.
3: The Commonwealth Games.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधा कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें श्रोताओं कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद प्राची, धन्यवाद अनुभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds nearly 550 points. Nifty settles above 24,700. In Asian markets, South Korea's Kospi slips over 5%. And global crude oil prices tumble.
1: देश के प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त. Sensex 550 अंक से अधिक बढ़ा. Nifty 24,700 पर बंद हुआ. एशियाई शेयर सूचकांकों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5% से अधिक फिसला और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.
0: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Prachi.
1: और श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने किस तरीके का व्यवहार किया. घरेलू

0: शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांक लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 544 अंक यानी 0.7% बढ़कर 78,639 पर बंद हुआ। निफ्टी 391 अंक यानी 1.6% की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 1.2% और स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% बढ़ा।
1: Benchmark domestic equity indices ended in positive zone for the fourth straight session today. The Sensex rose 544 points or 0.7% to close at 78,639. The Nifty surged 391 points or 1.6% to settle at 24,774. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index jumped 1.2% and the Small-Cap 100 Index gained 1.3%.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंडिगो 4.2%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 3.5% से अधिक और इंफोसिस में 3.5% की बढ़ोतरी हुई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सनफार्मा 2%, भारती एयरटेल और मारुति 1% और टाटा स्टील में लगभग 0.5% की गिरावट आई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 26 out of 28 sectors ended in positive zone. Among the top gainers, IT, as well as focused IT, advanced 2.7%, services rose 2% and industrials gained 1.3%. In contrast, hospitals lost 0.6% and healthcare dipped 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,837 companies advanced, shares of 1,552 companies declined and shares of 206 companies remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 5 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.34 रुपए पर बंद हुआ। शरद जी, हमने हम अगर आगे की बात ना भी करें कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो बाजार है उसकी चाल रहेगी, अगर हम तथापि आज की बात करें तो आज के परिदृश्य में आप किस तरीके से देखते हैं कि जो मार्केट है वो हमें क्या संदेश देना चाह रहा है निवेशकों को, खास करके जो नए तौर पर जुड़ना चाह रहे हैं?
2: देखिए, बहुत समय बाद मार्केट ने ये जो आज लेवल पे क्लोज हुआ है जिसका अभी आप जिक्र कर रही थी, तो वो लेवल बहुत समय से इंतजार था। 24,500 निफ्टी की बात करें तो 24,500 के आसपास घूम रहा था और उससे ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा था जब वहां जाता था। तो मुझे लगता है मिडिल ईस्ट से जो संदेश आया है, वॉर से ये जो एक तरह से विराम लगा है
0: जी।
2: मैं इसको ऐसे कहूंगा कि विराम की एक उम्मीद बनी है, क्योंकि पिछले 5 महीनों में ना जाने कितनी बार हम ये लगता था कि अब समझौता हो गया, अब अटैक नहीं होगा, अब होगा, फिर नहीं होगा, फिर इधर से कुछ थ्रेट आता था, उधर से कोई धमकी आती थी। तो मुझे लग रहा है कि उम्मीद ये करते हैं कि थोड़ी वॉर फटीक अब जैसे आ रही है, तो अगर वॉर फटीक आ रही है तो ये वहां पर थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ेगा और मार्केट इसी का इंतजार कर रहा है। मार्केट को देखिए, मार्केट में एक जो अनिश्चितता का माहौल बना था, और मुझे लगता है सभी लोगों को इसको जानना चाहिए, मार्केट अच्छी खबर को सेलिब्रेट करता है, बुरी खबर को भी हजम कर जाता है, पर एक चीज जो नहीं हजम होती है वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। तो ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पता नहीं युद्ध कब तक चलेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा और कहां तक फैलेगा, इसको लेके मार्केट अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के चलने की जरूरत है। इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी पिछले 5 महीनों में ऐसा कई बार हुआ है कि युद्ध रुकने की घोषणा हुई, रुका भी रहा, पर फिर उसके बाद कुछ हो गया। तो आई थिंक अभी भी फूक फूक के पग धरने की जरूरत है, पर एक खुशखबरी जैसा आप कह रही हैं, आज बात करें तो जरूर है।
1: Of course, we will continue with this discussion, Charaji. But before that, let me repeat the numbers. Prachi, if you'll just repeat the numbers for our listeners, where they can call us with their queries.
0: बिल्कुल श्रोताओं, आप हमें कॉल करिए, कोई भी सवाल आपके मन में हो, व्यापार, अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल करिए इन नंबरों पर। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर। मार्केट मंत्र है ये प्रोग्राम और हमारे समक्ष जो मार्केट विशेषज्ञ हैं शरद कोहली जी, वो विराजमान हैं। तो अपना कोई भी सवाल बेधड़क पूछिए।
1: शरद जी, लेट्स गेट बैक टू द मार्केट। इफ यू लुक एट द वे द सेंसेक्स एंड द निफ्टी टुडे बिहेव्ड, सेंसेक्स रोज अबाउट 0.7%, इन कॉन्ट्रास्ट वी सॉ निफ्टी सर्जिंग 1.6%। डू यू थिंक इट हैज, एंड इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, द निफ्टी 50 जंप्ड नियरली 200

0: points in just 2 minutes today. So is it something to do with the new, you know, that rule that has come out regarding the closure of our business? If you can just explain to our listeners.
1: Yes, I think the additional 10 minutes added to the derivatives market in NSE did contribute its bit. Because let us try and understand this. Yeah. So what happens is that there is a weighted average which is calculated for half an hour, the last half an hour on the cash section. So what used to happen is that the F&O traders, you know, had to ultimately close their deals on the basis of the price final determination, which happened. Now what happened was cash and F&O used to happen together, so that used to lead to a panic. So F&O traders did not get any time, sometimes they never used to get that time to settle down the prices. Now these additional 10 minutes has allowed the F&O traders to allow the cash section to close down so they can know what the price discovery is and then take a call on whether they want to carry forward the deal or they want to square it up. Yes, so because this was the first day
0: happened only on the NSE.
1: Only on the NSE. Yes. So because this was the first day, Anubha, so what has happened is that, you know, the traders were excited. They wanted to test waters. I think with the flux of time, as the days progress, you will see normalcy will return. You will not see this last minute splurges which happened today.
2: Right. Dilli se humare saath pehle caller jud rahe hain. Inka naam hai Idris. Ji, karikram.
3: Hello,
2: ji. इदरीश जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछें.
3: नमस्कार जी.
2: नमस्कार.
3: मैं बैंक में गया था वो नंबर लिंक करवाने खाते से.
1: हाँ जी.
3: तो मैडम का अंगूठा लगा हुआ है तो कह रहे हैं ये नहीं नंबर लिंक नहीं होगा.
0: इदरीश जी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं और एक आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे अपना रेडियो प्लीज आप पीछे से बंद कर दीजिए.
3: अच्छा
0: जी. हाँ हाँ अब आप बताएं आप किस नंबर की बात कर रहे हैं.
3: खाते से नंबर लिंक करवाने गया था.
0: अच्छा जी. ओके.
1: तो उन्होंने आपको कहा कि आपका मैडम का नंबर लिंक्ड है आपकी मतलब आपकी वाइफ
3: मैडम का खाता है उनका अंगूठा लगा हुआ है तो वो कह रहे हैं अंगूठे वालों का नंबर लिंक नहीं होगा.
1: अंगूठे वालों का नंबर लिंक नहीं होगा इसका मतलब बैंक वाले ने सिग्नेचर्स के लिए शायद इंसिस्ट किया होगा.
0: जी
3: हाँ जी हाँ.
1: तो आप तो खाता आपकी वाइफ का शायद था शायद आपका नहीं होगा.
3: वाइफ का है और उन्हीं का.
1: नहीं नंबर तो उनको अगर थंब इंप्रेशन भी है तो नंबर तो उनको लिंक करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो मैंडेटरी आजकल. तो इसमें इदरीस जी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बैंक के किसी सीनियर ऑफिसर से मिलें. आपकी हमारी आवाज वापस आ रही है फोन से तो आप प्लीज रेडियो सेट की आवाज कम करें. तो उससे आपको किसी सीनियर मैनेजर से मिलना चाहिए क्योंकि खाली थंब इंप्रेशन होने का ये मतलब नहीं है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा. क्योंकि इवन यू नो आपको मैं अनुभा और प्राची को भी बताऊं कि जो बायोमेट्रिक तो आधार में भी होता है और बायोमेट्रिक आजकल फोन में भी चाहिए होता है. तो इसलिए देयर इज नो रीजन. मुझे लग रहा है बैंक वालों को पूरी जानकारी नहीं है. इदरीस जी आप किसी सीनियर मैनेजर से मिलिए और उनको नंबर लिंक करना ही पड़ेगा ये मैंडेटरी आजकल.
0: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल अगेन कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली. अनिल इज ऑन लाइन विद अस. अनिल वेलकम टू मार्केट मंत्रा. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: मैम
0: जी
4: कोहली साहब आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन रिगार्डिंग द F&O P&L टू बी सबमिटेड इन अलोंग विद द रिटर्न.
1: श्योर.
4: When we submit, we take the net debits and net credits as sales.
1: Yeah.
4: And then take out the profit.
1: Yeah.
4: Isn't it? Yes.
1: Yeah, absolutely.
4: So, right. But the turnover is, you say, it is high, but we are not supposed to take the actual figures of the derivative.
1: Yeah.
4: Right?
1: Yeah.
4: Only loss and profit is to be taken.
1: Absolutely. Absolutely, Anandji. You are spot on. If you take the total, then it will be very, very high. So the net profits and losses or net debits and credits are to be taken. You need not take, I mean, if you, I mean, to make our other listeners understand with your permission, Anubha and Prachi. Because what happens is when you take a lot, suppose you're taking it in futures. So the lot size turnover may be very, very high. So that way, you know, somebody who's made probably 30,000-40,000 rupees, he may end up showing a turnover of 60-70 crores. Yes, Anilji, your understanding is absolutely spot on and I don't need to elaborate any further because you're perfectly on track.
2: Jaipur se humare saath Jitendra jud rahe hain. Jitendra ji, karikram mein aapka abhinandan.
5: Thank you. Sir, ye jaise
0: जितेंद्र जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आपसे. जी आपसे दोबारा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा अपना सवाल पूछें आराम से. जी
2: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है. कोई बात नहीं अनुभव हम आगे बढ़ते हैं. रुक करते हैं एशिया के शेयर सूचकांकों की तरफ. एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 5% से अधिक और जापान का निकेई

0: सूचकांक लगभग 1% नीचे आया। जापान और अमेरिका ने जापानी मुद्रा को 40 वर्षों के निचले स्तर पर गिरने से रोकने के लिए एक समन्वित येन खरीद हस्तक्षेप की पुष्टि की है। टोक्यो ने संकेत दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह आगे भी कार्रवाई करने को तैयार हैं। जापान के वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अमेरिका वित्त विभाग के समन्वय से जापानी येन की खरीद की। वित्त मंत्री कातायामा यात्सुकी ने आज एक बयान जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की।
1: Shraddhi, I'd like to understand this particular thing that has happened, that where Japan and United States have confirmed a coordinated yen buying intervention to halt, as Prachi just read, to hold the Japanese currency slide to 40 years low. What does it mean exactly when, you know, two countries come together and do this kind of coordinate like this?
2: We need to understand, Anubha, that Japan is a very close ally of the US. And it is true that the Japanese yen was collapsing. It was falling. It was sliding like anything. Although I must point out here that when a currency slides, because Japan is primarily an export-driven market, so the exporters were gaining.
1: Yeah.
2: But because of the interest rate hikes in Japan, the currency was losing value. So US, as a true ally, came to the rescue. And they started buying yen and selling dollars to stabilize the yen. But, you know, for how long this will go on is a question mark. Because if they sell too many dollars, you know, it will start impacting US dollar as a currency.
1: Hmm.
2: But for now, this has been intervened. Let's see. I'm very closely watching this particular event because we monitor forex currency management, very, very closely. And it's a very interesting alliance, you know. I wish this kind of alliance could be there with the rupee as well. But because Japanese yen is amongst the dollar index currencies, so that is why US is intervening in it.
1: So is it the first time we're looking at something like this, or this is a practice, which has been around?
2: No, it has happened earlier as well, because there were a few years ago when Japanese yen, then Japan had deliberately devaluated it. We've seen China has devaluated its yuan in the past.
1: Hmm.
2: So sometimes when you are export-driven economy and your currency becomes weak, it becomes beneficial for exporters for that matter.
1: Hmm.
2: Yeah.
0: मुंबई से हमारे साथ इस बीच रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो, गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है कि फार्मा सेक्टर के बारे में 100% ड्यूटी लगाने की बात सुनी थी
2: जी।
3: तो वो फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना कैसा उचित रहेगा क्या? वैसा भी अभी आईटी सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, आईटी सेक्टर भी बढ़ रहा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा रहेगा? और दूसरा एक छोटा सवाल है कि मैंने 2023 में एक मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट रखा था स्टेट बैंक में, वो 26 को 1 अगस्त को अभी ड्यू होने वाला था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो 26 का डिपॉजिट और 29 तक उन्होंने रिन्यू कर दिया, जो मैंने दिया ही नहीं था। तो ऐसे हालत में वो ऑटोमेटिक कैसे रिन्यू हो गया, उसके लिए
2: रत्नाकर जी, पहले आपके पहले वाले सवाल पर आते हैं। देखिए, फार्मा सेक्टर पे जो 100% टैरिफ की प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात करी है, वो 2 साल बात करी है पहले, तो अभी नहीं लगने वाले हैं। तो अभी मुझे कोई फार्मा सेक्टर में कोई खामी नहीं नजर आती, कोई कमी नहीं नजर आती। आप बहुत आराम से उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जब बात आती है तो दुनिया भर में अब ये चर्चा है कि वो अपने निर्णय बदल भी देते हैं, और अभी तो 2 साल बहुत दूर है। दूसरा ये भी देखना होगा कि 2028 में तो उनका टर्म ही पूरा हो रहा है, तो इसलिए उसमें फार्मा सेक्टर मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही। आप अच्छी कंपनीज का चयन करके, ऐसे ही आईटी सेक्टर में भी है जो कंपनीज अच्छी हैं, यहाँ हम कंपनीज का नाम नहीं लेते, पर जिन कंपनीज के नतीजे अभी अच्छे आए हैं, मुनाफा अच्छा आया है, मार्जिन अच्छे आए हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट का, ये हुआ क्या होगा, जब आपने डिपॉजिट किया होगा तो उस समय इसमें ऑटोमेटिक रिन्यूअल की ऑप्शन उसमें टिक हो गई होगी, इसीलिए बैंक से वो रिन्यूअल हो गया है। अब आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो आप कभी भी निकल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप जब बैंक को बोलेंगे कि मैंने तो नहीं कराया था, तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। इसमें प्रीमेच्योर एनकैशमेंट पूरी तरह से अलाउड है। आपने को मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉक इन पीरियड, बैंक का कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसमें लॉक इन नहीं होता। ये पोस्ट ऑफिस में देखा जाता है जहाँ लॉक इन होते हैं, जहां पर आपने एक बार कर दिया तो बहुत जल्दी आप निकल नहीं सकते। तो बिल्कुल रत्नाकर जी, बैंक जाइए और अगर आप निकालना चाहते नहीं रखना चाहते आप इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप मार्केट मंत्रा को बताइएगा, हम आपको इसको और स्पष्ट करेंगे।
1: और जो भी इनकी लास्ट डेट थी उससे जब ये निकालेंगे तो शरद जी जैसे कि एक कॉमन प्रैक्टिस है उनको उतने दिन का इंटरेस्ट उनको और मिल जाएगा।
2: हाँ, पर उसमें कुछ कटौती
1: होगी, कटौती भी होगी,
2: थोड़ा सा पेनल्टी वो लगाते हैं क्योंकि प्री मैच्योर माना जाता है, पर क्योंकि

0: आप पैसा चाहते हैं, आप तो पैसा यूज करना चाहते होंगे या कुछ और विकल्प आप ढूंढ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए।
1: देखते हैं अगला सवाल क्या है। भोपाल से शंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्ते शरद कॉलेज जी। सर मेरा सवाल है कि थोड़ी सी मार्केट में रौनक आई है क्योंकि ये एफआईआई का आने का सिलसिला शुरू हो गया है
0: जी।
2: तो ये अब डू यू थिंक कि अब ये ट्रंप की और नवंबर आने वाला है, ट्रंप को थोड़ा सा वहां पे भी थोड़ा सा डर रहेगा उनके इलेक्शन का, तो थोड़ा स्टिमुलेट होगी हमारी मार्केट एंड दिस विल बी द लास्ट टाइम वी विल बी सीइंग दीज लेवल्स एंड वी शुड सी हायर लेवल। क्या आपकी निफ्टी के बारे में गेस है फॉर नेक्स्ट टू इयर्स बिफोर ट्रंप रिटायर? थैंक यू सर।
0: नहीं ट्रंप, शंकर पहले तो ट्रंप रिटायर नहीं हो रहे हैं, ये जो इलेक्शन होता है नवंबर में ये मिड टर्म पोल्स कहलाते हैं। ये अमेरिका में दो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और उसको सेनेट कहते हैं, और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दो साल का होता है, उनका टर्म पूरा हो रहा है, सेनेट्स में भी कुछ सीट खाली हो रही है, तो वहाँ उसके बाद अगर मान लीजिए मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स की नहीं रहती है तो फिर उसको लेम डक प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई वो अप्रूवल नहीं ले सकते। पर आपका मूल मुद्दा ये था, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में चला गया, आपका मूल मुद्दा था कि क्या ये रौनक रहेगी। देखिए ये अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि पिछले 5 महीने से ऐसा कई दफे मौका आया जब ऐसा लगा, ये जो रौनक शब्द आपने इस्तेमाल किया कि रौनक आ रही है वापस, पर जब भी रौनक आने लगती है तो फिर अब रौनक का उल्टा कुछ होता होगा तो मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, वो होने लग जाता है वहां पर। मैं बहुत निराशावादी बात करना नहीं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ हमला हो जाता है, कहीं से कोई धमकी आ जाती है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बिगड़ जाती है। तो शंकर उम्मीद तो यही करते हैं कि अब ये जो रौनक है ये टिके। वाकई हमने शुरू में बात किया 24,700 आज छुआ है, बहुत दिनों बाद ये छुआ है, 25,000 की तरफ निफ्टी की हम उम्मीद करते हैं बढ़े, पर अभी बहुत फूंक फूंक कर पग रखने की जरूरत है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि 5 महीने का अनुभव ये कहता है कि अनुभव
1: जी
0: कि ये जो है अभी इस पर पूरी तरह से यकीन करना सोच समझ के
1: थोड़ा जल्दी होगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं। रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। रवि जी आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: मार्केट मंत्री को नमस्कार, मैं जानना चाहूंगा जैसे ईरान और अमेरिका का
1: जी सवाल पूछिए प्लीज।
3: अमेरिका और ईरान का जो युद्ध विराम लग रहा है ये कब तक क्लियर होगा?
0: अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम लग रहा है कब तक क्लियर होगा? क्लियर होगा मतलब चलता रहेगा, उम्मीद करता हूँ यही पूछ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं सर, उम्मीद पे रवि जी दुनिया कायम है, हम भी कायम हैं और सारी दुनिया ही ये कोशिश कर रही है, युद्ध किसी के हक में नहीं है, अभी इसी पे चर्चा चल रही है लगातार के उम्मीद करते हैं कि ये चलता रहे, हम तो यही कहेंगे। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूं रवि जी ने अगर जवाब नहीं भी सुना तो बाद में मार्केट मंत्रा यूट्यूब पे भी डल जाता है, आप उस पे जवाब को कर सकते हैं, तो मैं उसको रिपीट करने से बच रहा हूं।
4: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। शहनाज इज ऑनलाइन with us from Mumbai. Shehnaz, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
5: Hi, good evening to all of you.
4: Good evening. Please.
5: Sharan ji, मुझे ये पूछना है कि मैंने आप बहुत थोड़े दिन पहले वो कर रही हो आपको बताया था कि मेरे इनकम टैक्स के जो पैन कार्ड है उसमें 18 लाख की कार दिखा रही है 26 ईयर्स में और उसका जो 18,000 भरा भी है वो लोग ने टैक्स राइट इफ यू रिमेम्बर पता नहीं एनीवेज तो वो हिसाब से मैंने ये बार जो टैक्स किया भर दिया मैंने ऑलरेडी तो क्या हुआ विद इन 24 आवर्स मेरे अकाउंट में 18,000 आ गए विच इज ऑफ कोर्स आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट मैंने तो पैसे भरे भी नहीं है तो क्या आगे चल के उसकी रिकवरी आ सकती है तो मुझे क्या करना चाहिए आगे?
0: अगर मैं ठीक समझ
5: सेफ में दिखा रहा था इसलिए मैं वो तो कुछ भी नहीं हुआ फाइनेंशियल लॉस तो मुझे है ही नहीं लेकिन जब रिटर्न फाइल किया तो दूसरे ही दिन विद इन 24 आवर्स आई रियली अप्रिशिएट द एफिशिएंसी ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट मुझे रिफंड आ गया। अभी दूसरी बात ये बतानी है उसका जवाब आप देना मुझे
0: जी। शहनाज देखिए ये ऐसा लगता है कि शहनाज यू डिड नॉट डू दैट ट्रांजैक्शन, आपने वो 18 लाख की गाड़ी नहीं खरीदी, तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि गलती से पैन नंबर आपका कोट हो गया और गाड़ी आपके उसमें दिखने लगी, उसमें 1% TDS होता है 10 लाख से ऊपर की, TCS बोलते हैं उसको, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स, तो 1% का वो जमा करा, आपने रिफंड भी ले लिया। मुझे लगता है शहनाज आपको इसको वापस करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन ही नहीं है अब, क्योंकि आपके उसमें आया और आपने रिफंड, वैसे आपको कायदे से क्या करना चाहिए था कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम उसको क्लेम नहीं करना चाहिए था क्योंकि आपका था नहीं, तो अब हो गया है तो अब इसको वापस देने के लिए आप तैयार रहिए, मुझे उम्मीद है कि आएगा।

0: crude oil prices tumble. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Do join us then. Till then, from the entire team, goodbye. Namaskar.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: நேர்களை வேறு எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய திரைக்கானம் கேட்டீர்கள். சில நொடியில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल सोमवार को भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनावों में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का भाजपा पर विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस जीत के लिए पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी। नवीन ने कहा कि बांकीपुर और दतिया में भाजपा को अपेक्षित जनादेश नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पार्टी इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे 1979 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल

0: நிறைவு பெற்ற நினைவில் நிறைவை தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है. विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था. उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा.
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती

0: न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल सोमवार को भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्दीधारी और नागरिक सेवाएं दोनों ही राष्ट्र सर्वोपरि प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। जब लक्ष्य एक ही होता है तो व्यवस्था का प्रत्येक तत्व राष्ट्रीय शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिले चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाघाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर हैं, जहाँ 380 गाँव और 14,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न है। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है, जहां 11,066 विस्थापितों को आश्रय दिया गया है। इसके अलावा 17 राहत वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। डाक विभाग ने प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के शताब्दी वर्ष पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस टिकट का विमोचन कल नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: அடுத்ததாக தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சு.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர்ஃபிரோசி. लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है. विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था. उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा.
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है.
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है. उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक

मतों से हरा दिया। उधर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा, भारत उज्बेकिस्तान सरकार और वहां की जनता द्वारा आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति से निपटने के लिए उठाए गए कड़े रुख की सराहना करता है। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। बुधवार सुबह आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा नीति वक्तव्य जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वे विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्तीय बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। इससे पहले चक्रवर्ती पर्यवेक्षण विभाग में मुख्य महाप्रबंधक का प्रभार संभाल रही थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए नई दरें अधिसूचित करते हुए कहा कि डीजल पर निर्यात शुल्क अब ₹25.50 प्रति लीटर होगा, जबकि ATF पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर ₹22 प्रति लीटर कर दिया गया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இதுவரை இனிய ராகம் கேட்டோம். தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர்ஃபிரோசி. लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है. विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था. उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा.
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है.
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है. उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हरा दिया. उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है. ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी. कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया. वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई. बुधवार सुबह आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा नीति वक्तव्य जारी किए जाने की संभावना है. हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती

0: दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वो विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्त बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। इससे पहले चक्रवर्ती पर्यवेक्षण विभाग में मुख्य महाप्रबंधक का प्रभार संभाल रही थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए नई दरें अधिसूचित करते हुए कहा कि डीजल पर निर्यात शुल्क अब ₹25.50 प्रति लीटर होगा, जबकि ATF पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर ₹22 प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर ₹3.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता ईरान के लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि पहला चरण हॉर्मूज जल डमरू मध्य को खोलना है, जबकि दूसरा चरण परमाणु निरस्त्रीकरण का होगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times yesterday amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concerns over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha yesterday passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. In assembly by-elections, Jan Swaraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Banjalpur in Gujarat and Congress has kept Tatiya constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. RJD candidate Rekha Kumari finished third with 14,273 votes and forfeited her security deposit.

0: அடுத்ததாக நாம் கேட்கவிருப்பது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है. विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था. उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा.
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है.
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है. उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया. उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है. यह सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी. कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया. वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा स्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई. रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा कल नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं. हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा स्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है. रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था. रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है. वह विदेशी मुद्रा विनिमय में और वित्तीय बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी. असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है. राज्य की 7 जिलों में 1,28,000 से

0: अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता ईरान के लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने उम्मीद व्यक्त की कि होर्मुज जलडम्बर मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पहला चरण होर्मुज जलडम्बर मध्य को खोलना है, जबकि दूसरा चरण परमाणु निरस्तरीकरण होगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा। गजा में युद्ध के बाद के बदलाव की देखरेख करने वाले बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। बयान के अनुसार इस मुलाकात का एक मुख्य उद्देश्य हमास के साथ हुए नए निरस्तरीकरण समझौते पर चर्चा करना था। शांति बोर्ड ने एक बयान में कहा कि गजा के उच्च प्रतिनिधि निकोले म्लादेन्यू ने प्रधानमंत्री और उनकी टीम के साथ रचनात्मक और विस्तृत बातचीत की। बयान में कहा गया है कि लक्ष्य स्पष्ट है और इस पर कोई संदेह नहीं है कि गजा पट्टी में हथियारों का पूर्ण निरस्तरीकरण और बंदूक के शासन का अंत होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। यह 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Lok Sabha passed a Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in the ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers' Books Evidence Bill 2026. In assembly by-elections, Jan Swaraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Dattiya constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. In Gujarat, BJP candidate Satish Patel defeated his nearest rival Bhikabhai Rabari of the Congress with a margin of over 30,000 votes. The Congress has kept the Dattiya seat in Madhya Pradesh with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival Ashutosh Tiwari of the BJP by over 6,000 votes in by-poll. Voting for the by-polls to the 3 constituencies was held on the 30th of last month. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held talks with Uzbekistan Foreign Minister Bakhtiyor Saidov in Delhi yesterday. Both ministers undertook a detailed review of the strategic partnership with particular focus on energy, infrastructure, trade, defence, education and culture. Union Home Minister Amit Shah has said that Indian athletes have scripted joy's history by making India the 4th highest medal-winning nation at the Glasgow Commonwealth Games 2026. In a social media post, Mr. Shah said that this meteoric success scales to an even greater height as India now officially takes over as the proud host nation of the CWG 2030 to be held in Ahmedabad. Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav has announced the designation of Glock Lake in Arunachal Pradesh as India's 101st Ramsar site. In a social media post, the minister described the development as an important